संसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंक पहयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं भूल राजा हो बैठा कहूं सिमट पहो संकरया कैठा सिगरी सृष्ट दिखाया चंग पवाद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख ओबार असिख संग्रो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच्छ करो रण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तेन

संबत सत्रह सहस पणज अर्ध सहस फुन तीन कह ज भाद्रव सुधि अष्टमी रावारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवाद 405 चरित्र समापत।

दल भंजन गौर सूरमा वड जोदा बह पर उपकारी एह बोला हर गोविंद का सुनो खालसा वीर फते पाओ मैदान में पकड़ हाथ शमशीर कहां बुद्ध प्राप तुष हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच

परम सम्मान जो गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा सदका

0: राम नाम नार निसबा सुर मै निमख एक और धार।
1: इथे भी ममे दी दुलावा नाल ही पाठ है, मैं हाहे दी सिहारी दे सहत पाठ नहीं है। राम नाम नार निस, राम नाम नार निस बासुर मैं निमख एक और धार।

0: साध संगत जीओ, जिवें जिवें पाठ ज्ञानी जी ने बेनती की दसिया है आप जी नूं इसे ही तरह, क्योंकि सुनहरी बीड़ बाबा दीप सिंह जी वाली इधर पुचंगी सिंह ने प्रकाश की है ते दास ने नाल नाल दर्शन किए हैं। जिवें जिवें ज्ञानी जी दसते रहे हैं इसे ही तरह उचारण किए ने। नवें छापे दे विच कुछ इस प्रकार छापे गए ने, पर बाबा दीप सिंह जी वाली बीड़ सुनहरी बीड़ दे विच उहदे विच इसे ही तरह उचारण किया होया है। आओ जी, अगे सतगुरु जी महान कृपा बख्शिश कर रहे ने। अगे वाला जिहड़ा शब्द है ना, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो जी प्रीतम सतगुरु जी जगत जलंधे नूं तारदे होए जदों बिंदराबन दे विच गए, तद सतगुरां ने उत्थे देखिया कि रास मंडल दे विच रास पाई जा रही सी। किसी ने कृष्ण का रूप धारण किया, कुछ गोपियां बनिया हुई, ग्वाले बने हुए, इस प्रकार के रूप धारण करके काम चेष्टा दे विच खचत हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे कुकर्म करद्या होया जदों देखिया सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने, तां सतगुरु जी ने यह पावन पवित्र शब्द उचारण किया। ये जो शब्द आप सरवण कर लगे हो, यह शब्द सतगुरु जी ने उथे उचारण किया। आओ जी, प्रेम दे सहत सरवण करिए जी।
1: राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे, सा धरती सो पौन चुलारे।

0: तत् परोता जग सूता मर आवै जाए बिन गुर शब्द न सोझी पाए अनहद शब्द वज्जै दिन राती अविगत की गत गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहया निर्बानी सुन समाध सहज मन राता ताज हौ लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मेट समानिया राम कली महला पहला।
1: ए अगे वाला जेड़ा शब्द प्रारंभ हो रहा है, धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा साहा सोधन वास्ते बाबा कल्याण चंद जी ने हरदयाल पुरोहित नूं बुलाया। हरदयाल पुरोहित नूं बुला के सतगुरु जी दे पिता जी कहण लगे कि नानक देव जी दा गुरु नानक देव जी दा विआह दी तरीक जिहड़ी रखनी है। हरदयाल पुरोहित जी ने ज्योतिष दे अनुसार सतगुरु जी नूं चौंकी दे उपर बैठा के ते साहा गिण लगा, कहन तो भाव के केड़ा दिन रखना है, आनंद कारज दा विआह दा दिन केड़ा रखना है। तां सतगुरु जी ने हरदयाल पुरोहित नूं पावन पवित्र उपदेश बख्शिया। गुरु के प्यारे सिखां नूं वी इह सिख्या दित्ती है सतगुरु जी ने कि साहा गण है ना करहै विचार, साहे उपर एकंकार, कहन तो भाव है कि साहे दी

सुख थीए कर अपराध सरण हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर सरण ना आईए ब्रह्म ना पाईए भरम भुलाईए जन्म मर आईए जमदर बाधो मरै बिकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पादे पंडित मिसर कहावह दुविधा राते महल ना पावह जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन्म जन आपार एक बुरा भला सच एक है बूझ ज्ञानी सतगुर की टेकै गुरमुख विरली एको जानिया आवन जाना मेट समानिया

0: हठ निग्रह कर काया छीजै, वर्त तपन कर मन नहीं भीजै, राम नाम सार अवर ना पूजै, गुर सेव मना हर जन संग कीजै।
1: पूजै पाठ थोड़ा जिहा कस के जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता, पूजै नहीं कहना, पूजै जिवें उचारण होया।
0: जम जंदार जोहे ना नहीं साकै, जम जंदार जोहे नहीं साकै, सरपन डस ना सकै, हर का रस पीजै रहाओ। वाद पड़ै रागी जग भीजै, त्रैगुण बिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चाड़स पवन सिंघासन भीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों धीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, किरत पया दोष का कहो दीजै, अन्न ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै, मनमुख जन्मै जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास धरीजै, तुर की सेवा राम रवीजै, नानक नाम मिलै किरपा प्रभ कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उतपुज अवर ना कोई, जो कहियै सो प्रभ ते होई, जुगह जुगंतर साहब सच सोई।
1: साहब पाठ हाहे दी सिहारी तो बिना शुद्ध है, जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता, उचारण होवेगा साहब, पर हाहे दी सिहारी दे सहत जिहड़ा पाठ लिखती है उहदा उचारण साहिब बनदा है, पर हाहे दी सिहारी इत्थे शुद्ध नहीं। सो साहब ही उचारण करना, जुगह जुगंतर साहब सच सोई।
0: उत्पत पर लो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया,

अचह अभिमान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पावह दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीर्थ भरमस ब्याध न जावे नाम बिना कैसे सुख पावे।

जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना त्रिपताव है भेवा शब्द विचार गह है गुर सेवा मन तन निर्मल अभिमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाओ तुम शरणागत रहो सुभाओ तुम ते उपजियो भगति भाओ जप जापो गुरमुख हर नाओ हौमै गर्भ जाय मन भीनै झूठ न पावस पाखंड कीनै बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत् बीचार राम कली महला पहला ज्यो आया त्यो जावह बौरे ज्यो जन्मे त्यो मरण भया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भव जल पया तान तान देखत गर्भ गया कनिक कामनी स्यों हेत वधाए हे की नाम विसार है परम गया रहाओ जात सत संजम सील न राख्या प्रेत पिंजर मह कास्ट भया पुन दान इसनान न संजम साध संगत बिन बाद जया लालच लागै नाम विसार्यो आवत जावत जन्म गया जा जम ताए केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनिस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मह वेश करह नटुआ ज्यो

0: गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीणा।
1: समय सर पाठ ही उचारण करना संबंधक दया करके समैसर नहीं कर जाना। लिखती रूप इकट्ठा साध संगत जी स्वरूपा दे विच लिखिया गया है पर उचारण जिदा संबंधक पाठ करी दे उसे तरह समय सर इदा उचारण करना। रह गगनपुर दृष्ट समय सर अन

0: नानक सरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सखाई राम कली महला पहला औहठ हस्त मड़ी घर छाया तरन गगन कल धारी
1: ओ अलग ते हाठ अलग सत संग जी जिवे उचारण किया गया है एवं ही करना औहठ पाठ इकट्ठा नहीं करना पोथियां दे विच जां सरूपां दे विच इकट्ठा छाप दिता गया है पर उचारण अलग अलग ही करना ओ हाठ हस्त मड़ी मड़ी पाठ जिहड़ा है भारा करना मड़ी घर छाया धरन गगन काल धारी गुरमुख

सच समाई काया नगरी सबदे खोजे नाम नवन निध पाई मनसा मार मन सहज समाणा बिन रसना उस्तत कराई।

0: निर्मल संतह एह पूजा थाय पाई पवित पावन से जन साचे एक शब्द लेवलाई बिन नावै होर पूज न होवी भरम भुली लोकाई
1: भुली पाठ कस के करना जिदा ज्ञानी जी ने उच्चारण किया भुली नहीं कहना बिन नावै होर पूज न होवी भरम भुली लोकाई

0: पाठ पोला उच्चारण करना।
1: न्याओ तिसा का है सद साचा विरले हुक्म मनाई तेसनो प्राणी सदा त्याव जिन गुरमुख।

महाकवि से कविता नमी प्रतीत हो गई, पांच दफा सुनन नाल बिल्कुल पुरानी हो गई, बिल्कुल पुरानी, सब कुछ खो गया। संसार विच ऐसा कुछ भी नहीं जो पुराना ना हो, किधरे भी मन नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता, जो नहीं मिलिया नवा है मिलदे ही पुराना हो जाता है, जो नहीं वेखिया नवा है वेखदे ही पुराना हो जाता है, जो नहीं सुनिया नवा है सुनदे ही पुराना हो। मन नू नित नवा चाहिदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक है कदी पुराना नहीं आता, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा। भगत कहते ने एक दिन की गल नहीं, एक सैकंड पहले जो रस आया है दूजे सैकंड रस हो रहा है, तीजे सैकंड रस हो रहा है, और वह रस वधदा ही जा रहा है, वधदा ही जा रहा है, वधदा ही जा रहा है। वो साहिब नित नवा है, नित नवा है। किसी भी कविता संगीत की धुन नू पहले सुनदिया जो रस होगा, बार बार सुनन नाल रस को जाएगा, पर बार बार जपदिया ही रस वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। क्यों? वो साहिब नित नवा है, साहिब मेरा नीत नवा, क्योंकि साहिब पदार्थ नहीं है परमात्मा है, नित नवा है, सत परमेश्वर नित नवा। जो पुराना हो जाता इसका तो बोध है थोड़ा बहुत, कुछ चोटी दे महान शायरा ने खुदकशी भी कर ली, जैसे नंद लाल नूरपुरी ने, 3 साल पहले प्यारा सिंह रोशन ने, मैनू कई ने आके गिला किया क्योंकि 10-15 साल तो मेरे नाल चलता से, अमृतसर का वासी, बड़ा वड्डा चित्रकार, बड़ा महान कवि, कवि दरबारा की रौनक सारे समझते सन, दरबार साहब के नेड़े रहिंदा सी। जिस दिन मैं अमृतसर पहुंचता से, क्योंकि दास धन गुरु रामदास जी दे पुरब तो लैके दिवाली तक उत्थे हाजरी भरदा है, बस पहले खड़ा यह मिलता से मैनू गल नाल, मैनू पहले यह लगता से, लेकिन 3 साल पुरानी गल मैं करा, जब मैं पहुंचे मैं कह हद हो गई, प्यारा सिंह जी रोशन ये नहीं दिखाई देते, बाकी तो मिले। दूजे दिन भी जब मिलना ना होया, क्योंकि दूजे दिन कवि दरबार से, शायद आपनू पता होवे धन गुरु रामदास जी महाराज के पुरब ते बहुत वड्डा राग दरबार हुंदा है, जिस राग दे शब्द का उच्चारण है गुरु रामदास जी का उसे राग दे गाना आता है, 30-35 जत्थे पहुंचते हैं, बड़ी संगत आती है दूर दूर तो शहर तो, पर दूजे दिन कवि दरबार आता है, 30-35 कवि भी पहुंचते हैं चोटी दे। मैं देख के दंग रह गया, उन्होंने कविया च रोशन कोई नहीं सी, निर्वैर एक कवि दिल्ली का, मैं उन्होंने पूछ ले मैं थोड़ा मित्र कितने, कहने मित्र तो थोड़ा सी थानू नहीं पता, उन्हें अपने मकान की चौथी मंजिल तो गिर के खुदकशी की, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं कहा ऐसा करेगा, मैं कहा कुछ दिन तो मैनू कहिंदा सी जिंदगी की रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं पुनरुकती है, जिमें बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार खाई जाओ, सवेरे खा लो शामी खा लो, बार बार पी जाओ, बार बार सोना है, बार बार ओही गल्ला। मैनू कहिंदा सी मस्किन जी मैं उकता गया, ये पुनरुक्ति हुण मैनू नहीं चंगी लगती, ये रिपीटेशन हुण मैनू नहीं चंगी लगती, मैं कित्थे तक रिपीट करा, सवेरे खा लवां शामी फिर खा लवां, सो जावां फिर जाग पावां फिर सो जावां, इत्थे उही कुछ कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। बालबन 60 साल का सी, छोटी उम्र भी नहीं सी, पर लगता 60 का नहीं सी, इंज लगता सी जिवें 40 का होवे, सेहत अच्छी सी, तगड़ा सी।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप विच कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे रहे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है, फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे होया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देता। ऐसा मनुख ऐसा त्यास कीता जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी, परमात्मा नू जिहड़ा समझना है जानना है इते रस्ते दा वेखना है। इस तरह दे जानकार जानन वाले रस्ते नू समझन वाले इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, उदा कोई थां टिकाणा नहीं, उदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, उदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे कहने बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत देश भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं, बेअंत है, बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं है। जैसे किसी थान पे सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस देता या रास्ता दस रहा है नाल है तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचना है उते नहीं। जगत विच परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वक वक मंत्रां दा रटन ये रस्ता है, राम जपना, अल्लाह हो जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहेगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आस्ता चलता है, कोई बहुत आस्ता चलता है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है, ये भी महसूस करते हैं। क्योंकि मजहब बदलने दे बदलना, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल होवे।
जिंदगी कईयां दी रस्तियां च लंघ जांदी है, लेकिन बेशतर दुनिया ओ है जिन्हां नूं रस्ते दी भी समझ नहीं, ज्ञान नहीं, इस पासे दा शौक नहीं है। अगर रस्ते दी समझ आ गई है तो मंजिल तो प्रभावित नहीं है, नमाज पढ़ रहे ने खुदा तो प्रभावित नहीं है। इन्नी मैर्ज कर दें, बाणी पढ़ रहे ने गुरु तो परमात्मा तो प्रभावित नहीं है, पूजा पाठ कर रहे ने भगवान तो प्रभावित नहीं है। फिर क्यों कर रहे ने? भगवान कोलों कुछ मंग देने, खुदा कोलों कुछ मंग देने, वो जड़ी मंग है उस तो प्रभावित ने, जो देन वाला है दाता उस तो प्रभावित नहीं है। और मंग नाल कई दफा इस तरह जुड़ जाते ने, इस तरह जुड़ जाते ने, देन वाला ते कदी चेता ही नहीं आता। दात प्यारी विसरिया दातारा, कदी चेता ही नहीं आता, उसकी तो कभी याद ही नहीं आती। उसकी दात प्रभावित कर रही है, दाता प्रभावित नहीं कर रहे है। चूंकि दात प्रभावित कर रही है, दात होर मिले होर मिले, तो कोई नमाज पढ़ रहे है, कोई पूजा पाठ कर रहे है, कोई बाणी पढ़ रहे है, कोई गुरुद्वारे जा रहे है, कोई मंदिर मस्जिद जा रहे है, सब दात नाल जुड़े हुए ने। दात दी मंग, दाते दी कोई खबर नहीं, मंजिल दी कोई समझ नहीं, रस्तियां दी थोड़ी बहुत समझ है। इस रस्ते ते चल के शायद इस दात दी प्राप्ति हो जाए, इस मंत्र दे जप नाल, इस तरह दे पूजा पाठ नाल, इस तरह दी साधना नाल शायद ऐ चीज मिल जाए, ऐ वस्तु मिल जाए। तो सारी दुनिया विच इस तरीके दे नाल धार्मिक लोग करीबन करीबन 99% ओ ने जो दात लई सब कुछ ए कर रहे ने, दाते लई नहीं, दाते तो प्रभावित नहीं। जब दात तो प्रभावित नहीं ते दात लई कुछ कर रहे ने, तो गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने ते व्यापारी ने, कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। इन्ना नमाजियां देच, इन्ना पूजा पाठ करन वालियां देच, इन्ना बाणी दा जप करन वालियां देच, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जान वालियां साहिब कहिंदे कोई करोड़ा च इक अद सेवक होंदा जो दाते तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित है, खुदा तो प्रभावित है, ईश्वर तो प्रभावित है। सतगुरु करोड़ां च एक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रख दिया जो अनुभवी पुरुषां ने कीती है। किसी मस्जिद विच 10,000 दे करीब नमाजी होन, किसी चर्च विच 10,000 मनुख बैठे उन प्रेर करने वास्ते, किसी मंदिर विच 10,000 दा किधरे इकट्ठ हो गए पूजा करन लई, दर्शन करन लई, ते किसी गुरुद्वारे च किधरे 10,000 दे करीब सत्संगी बैठे होवन, उन्हां च एक जगयासु हुंदा है, जाग पिया, थोड़ी समझ आ गई, पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, समझ आ गई है। मैं दात तो प्रभावित सी, दाते तो प्रभावित नहीं, दाते दे प्रति जाग पिया, दाते तो प्रभावित हो गया, सिर्फ प्रभावित होया है, सिर्फ प्रभावित होया है। पहले दिन वाले कहे शब्द में जरा दोहरा ही दें, जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता, मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसको याद भी नहीं करता, मन जिसको याद नहीं करता, इस शरीर उसकी प्राप्ति लई कोई उद्यम नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता,
कोई समा नहीं कटता, कोई संघर्ष नहीं करता। इस तरह 10,000 इकट्ठ दे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे एक जगह आसो होता है, फिर 10,000 दे करीब जगह आसो होवन जो थोड़े जाग पे ने दाते तो प्रभावित ने, दात तो नहीं, दात ते है जो कुछ है, पता चल गया परिवार एक दात है, बच्चे एक दात ने, धन संपदा एक दात है, जीवन एक दात, सूरज दी रोशनी सानू दान दिच मिल रही है, वगदी हुई पवन दान है, बहुत कुछ जिस दासी कोई मुल नहीं चुकाया ते मिल जाता है, दाता वो दे रहे हैं। लेकिन 10,000 सत्संगियां दिचों कोई एक कद दाते तो प्रभावित हो गया, एक उसनु जग्यासु कहते हैं, जाग पे है, मेरा सुता होया नहीं, जाग पे है, मेरे एवें गुरुद्वारे नहीं आया, कुछ समझ है, सिर्फ एवें बाणी नहीं पढ़ रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं जप कर रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं हाथ विच गुटका ले बैठा, कुछ समझ है, उस जगह आसो। ये आंकड़े बहुत गहरे अनुभवी पुरुषां ने इकट्ठे किए ने, ते मैं थोड़े सामने जो उन्होंने मैं पढ़े थोड़ी जी समझ आई थोड़े सामने रख रहे हैं। 10,000 निवासी किसी मस्जिद दे चौवन, 10,000 पूजा पाठ करने वाले किसी मंदिर दे चौवन, 10,000 दे करीब प्रेर करने वाले किसी चर्च दे च बैठे होवन, 10,000 गुरसिख सत्संगी किसी गुरुद्वारे च बैठे होवन, एक जगह सो होंदा, बहुते नहीं होंदे, एक होंदा जो जाग पे है, समझ आ गई, मेरी दात लई ओ हुण गुरुद्वारे नहीं आउंदा, दाते लई आउंदा, श्री दात वास्ते बाणी नहीं पढ़ता, हुण दाते वास्ते पढ़ता, समझ आ गई। इस तरह 10,000 दे करीब अवन पे कोई एक जग्यासु होंदा है, फिर गिनती कर दें 10,000 जग्यासु होवन एक साधु होंदा है, एक साधु होंदा है। जैसे जैसे पहाड़ दे ऊपर चढ़िए ना तो जगह छोटी होंदी जा रही, थल्ले बहुत ज्यादा, जितने जग्यासु ने उतने साधु नहीं ने। 10,000 जग्यासु होवन उन्हां च कोई एक अद साधु आउंदा है जो बड़ा तेजी नाल चल पिया, मेरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लई पूरा समा कढ़दा है, पूरा संघर्ष करदा है, पूरी मेहनत करदा है, पूरा जप तप करदा है, मेरा प्रभावित ही नहीं होया, मेरी समझ ही नहीं आई। जिस दी समझ आई है उदी प्राप्ति ले यतन करन लग पे, मेहनत करन लग पे, बड़ी मेहनत करन लग पे, इनु साधु कहंदे। हुण होर सुन लो, 10,000 दे करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत आउंदा जो पहुंच गया, एक इस तरह एक करोड़ां च कोई कद बनेगा, कोटन में नानक को नारायण जय जी, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई एक। ऐसा क्यों है, मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए, अकल मनुख कोल मोटी हो गई, हर वक्त संसार दा चिंतन करिए, परिवार दा चिंतन करिए, कारोबार दा चिंतन करिए, ये सब आकार रखते ने, मोटे ने,
अकल मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहिंदे ने जब साधना करन विच बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ए प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तैनूं समझ सके, तैनूं समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहीदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहीदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ए पैर ने। प्यार दे सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति। प्यार एक रूप दे च नहीं है, इहदे कई रूप ने। संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी की मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख की यह कौन है, संबंध ते नहीं जुड़दा, संबंध ते प्यार नाल जुड़दा। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध प्रेम जोड़दा, प्रेम नेड़े लै जांदा है, ज्ञान नेड़े नहीं ले जांदा। देखना तो दूरों भी हो सकता है, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे आ, देखण दा की है, सूरज नूं वेख लैंदे आ, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे आ, बड़ी दूर दी चीज़ नूं वेख लैंदे आ। पहुंचण वास्ते तो कोई साधना करनी पएगी ना, उत्थे तक पहुंचण वास्ते तो कोई यतन करना पएगा ना। प्रेम ही नेड़े लै जांदा किसे दे, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। अगले की कितनी भी समझ पै जाए कि फलाना है फलाना है, उदी सारी जात पात नाम धाम कम सब कुछ का पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रहती है, पता तो चल गया मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े लै जाता है, ज्ञानी उरार ही रह जाते हैं। इतनी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे, बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं, यह भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान की लोड़ है, वेख सके रस्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चले, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, वो ते प्यार नाल जुड़ता है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने, प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं श्रद्धा आख्या गया, प्यार नूं भक्ति आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भक्ति कहिंदे ने, निवाण दा प्यार जिसनूं स्नेह कहिंदे ने, इह स्नेह अपने तो छोटियां नाल आउंदा है, बच्चियां नाल हो सकदा। बिना स्नेह तो ते बच्चियां नाल भी संबंध नहीं जुड़ेगा। प्यार दी ए धारा निमाण दी तरफ जा रही है। स्नेह पशुआं दे च भी आउंदा है, कीड़े मकोड़ियां च भी आउंदा है, पंछियां च भी आउंदा है, बल्कि स्नेह किसे किसे पशु च मनुख नालों भी ज्यादा आउंदा है। जैसे बंदर ने, बंदरी दा बच्चा मर भी जाए मुर्दा बच्चे नूं भी सीने नाल लाई रखदी है, सुटदी नहीं, छोड़दी नहीं। ऐसा मैं आगरे विच, हरिद्वार विच, कानपुर विच देख के दंग रह गया, बनारस विच देख के दंग रह गया, है ते बच्चा मुर्दा सुटदी नहीं पई, अद्धा गल गया, लीरां लीरां हो गया, नहीं सुटदी पई। बंदरी दे अंदर यह स्नेह बहुत बड़ा प्रबल है, मनुख नालों कई गुणा ज्यादा, मनुखी मां नालों कई गुणा ज्यादा। इसी स्नेह नूं मोह कह देंदे ने, घृणा नहीं इस मोह नाल। धन गुरु अमरदास जी महाराज ते कहंदे ने,
कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया। हे प्रभु जे किधरे तू मोह दे च मिठास ना पांदा बच्चे ते पलने ही नहीं सन, ना पशुआं दे ना मनुखां दे, रोंदा रह जाना सी बच्चा, किसने दुध पिलाना सी, तड़प के बिलख बिलख के मर जाने सन बच्चे, कि ना पशुआं ने संभाल करनी सी। सारा दिन दाना लभदी है चिड़ी आके बच्चे दे मुंह चुकांदी, ऐसा सब कुछ सने करा रहे हैं उधर। भगत नामदेव जी महाराज ते कहंदे ने मंदिर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाड़ी अले, पंच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अरे। भावे चरवाहा ग्वाला गौवां नूं बहुत दूर ले गया चराण वास्ते, पर वो बार बार याद कर रही है अपने बछड़े नो जो पिछे रह गए, उदा मन उस दे चे खांदी गा पई है, याद बच्चे नो कर दी पई। धन गुरु अर्जन देव जी ने एक होर भी हवाला दिता है, उड़े उड़े आवे सहको सांत इस पाछे बछड़े छरिया, बिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया। सिमरन तो मुराद याद है, कूंज अपने बच्चिया नू वालबन अक्तूबर दे महीने विच पहाड़ा ते छड़ आउंदी है। ये पहाड़ी पंछी है बर्फानी इलाके दा, जैसे नवी बर्फ पैनी शुरू हो जाती है कूंजा पहाड़ा नू छड़ के मैदानी इलाके च आ जांदियां, बच्चियां नू उत्थे ही छड़ आईयां, जो अक्सर सितंबर अक्तूबर दे च ही आउंदे ने। वड्डे वड्डे पहाड़ा दे टीलियां दे थल्ले उन्हां नू छोड़ आउंदियां ने, बर्फ पैनी शुरू हो जांदी है रिजक लभदा ने। उड़े उड़े आवे सैको सां तिस पाछे बछड़े छरिया, सैकड़े को एक को दो मील दा बहु हजारा मील आ जांदिया, दूर आ जांदिया। हिमालिया दा ये पंछी है मैदानी इलाकियां च आ जांदा है। उड़े उड़े आवे सैको सां तिस पाछे बछड़े छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करे। उन्हां बच्चियां नूं हुण कौन खिलावे कौन चुगावे, मां ते है कोई नहीं, ते आ गई है छोड़ के आ गई है। फिर वो पलदे किस तरह ने, वड्डे किस तरह आउंदे ने, मन में सिमरन करिया कि परमात्मा का सिमरन कीता है। मनुखी बच्चे नहीं करदे ते कूंज दे बच्चे ने की करना है। क्या कूंज ने परमात्मा का सिमरन किया? इतनी तौफीक ते मनुख दे च भी नहीं है, कूंज कितों करेगी। फिर सतगुरु जो ये कह रहे हैं, मन में सिमरन करिया, सिमरन परमात्मा का नहीं फिर किसका? इनू गुरबाणी खोल दी, कई थां ते गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी कर दी है। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे दूसरा शब्द, चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे जैसे बछरे कूंज मन माया ममता है। कूंज जद मैदानी इलाकों च आ जाती है दाणा चुग दिए बच्चे नु याद कर दिए, फिर चुग दिए याद कर दिए, दाने चुगदी जा रही है याद करती जा रही है, याद विच इतनी गहरी लीन हो जाती है भूल जाती है मैं याद कर रही हूं, ऐसा प्रतीत होने लग पैंदा बच्चा ही चुग रहा है मैं नहीं चुग रही। इन्हू कहिंदे ने ध्याता मिट गया, ध्यान मिट गया धेय रह गए। जैसे पालकी का गुंबद है मैं इन्हू वेखा ये ध्यान जोड़ा तो मैं ते ध्याता, ते जिस दिच मैं ध्यान जोड़ रहे हैं वो ध्येय विचकार ते ध्यान है, पर ध्यान दिच प्यार है, ध्यान दिच याद है,
ध्यान विच उमंग है, ध्यान विच प्यार है, इतना लीन होके मैं देख रहा तो कहने ध्याता मिट जाएगा, ध्यान मिट जाएगा, देह रह जाएगी, देह रह जाएगी। कूंज इतना ध्यान पूर्वक इतना स्मृति दे नाल दाने चुग रही है, वो भूल जाती है मैं चुग रही है, बच्चा चुग रहे है। बस इस नाल वो बच्चे पल रहे हैं। विज्ञान इस गल नूं ते तस्लीम करदा पिया कि विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, बड़े दूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। एक मनुख किधरे बैठा है, बहुत दूर दे मनुख बारे कुछ विचार कर रहा है तो उन्हों याद कर रहा है कि पहुंच जाती है, विचार पहुंचते हैं, ये सोचनी पहुंच जाती है, प्रभावित करती है। पंजाब दे ते कहने न खैर होवे, सैयद फलाने की बड़ी याद आ रही है, लगता है वह भी याद कर रहे हैं, वो तो कहें इतने ऐसा कहें। लेकिन किसी की जे बार बार याद आवे, हुण विज्ञान इस गल नूं तस्लीम करता है, अगला भी याद कर रहा है। सूफी ते इंज कहते हैं, वह दूजे ढंग नाल कहते हैं, वो कहते अज खुदा की बड़ी याद आ रही है, लगता है खुदा अज सानू याद कर रहा है। लेकिन भाई गुरुदास जी कहनन, तू एक दफा याद कर, परमात्मा तेन करोड़ा दफा याद करेगा, तेरी याद इतनी अंदौलत कर देगी। तू सिर्फ एक कदम चल, परमात्मा करोड़ा कदम चलेगा। अगर करोड़ा कदम परमात्मा चले ना, मिलाप हो ही नहीं सकता, तेरे एक कदम नाल नहीं हो सकता, एक एक कदम नाले वाट नहीं तैयार होएगी, तेरे सिमरन नाले वाट नहीं तय होने लगी। चरण सरन गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत। तू सिर्फ एक कदम चल, करोड़ा कदम परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, ताए ये फासला तय होवेगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल की गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा की याद ही मिला दें, एक चित जाए एक छिन दे आयो, एक छिन एक सैकंड, काल फास के बीच ना, काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता है। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किसनू करेगा, इतनी गहराई नाल जिस तो प्रभावित होगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, ये स्मृति निवाण की तरफ चली जाती है, ये प्यार निवाण की तरफ चला जाता है, इनू स्नेह कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इसकी निंदा नहीं करती, मोह क्यों है, कुर्बान किया तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह विच मिठास ना आउंदी, ना पशुआं दे बच्चे पलने सन, ना मनुखां दे, सारा संसार सुन्न हो जाना सी, कुछ भी नहीं होना सी। लेकिन सिर्फ मोह दे तल ते ही रह गए, अगे गया ही नहीं, ये मनुख पशुआं तो उच्चा नहीं उठ सकया। बस इन्नी गल है, इन्हें बुलंदियां नूं नहीं छोया। स्नेह विच एक छोटा होंदा है, एक वड्डा होंदा है, बच्चा हमेशा ही छोटा, मासूम है, कमजोर है, मजबूर है, स्नेह है उसका। स्नेह विच देना ही देना होंदा है, समा देना है, मां ने अपने अस्त्रां दा दुध देना है, खून देना है, अपना अपना मास देना है, एक तरीके नाल अपनी शक्ति देनी, समा देना, वकत देना, बच्चे नू ते देना ही देना है, देना ही देना है। ये देन दी भावना स्नेह पैदा कर दी है, स्नेह ना होवे ते देन दी भावना नहीं पैदा होंदी, ये भी मैं अर्ज कर दें। ते स्नेह दी अपनी एक सीमा भी आती है, अपने बच्चे नाल आउंदा स्नेह, दूजे नाल नहीं आउंदा।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਐਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਸਨੇਹ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੱਟੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਖਾਹਿਸ਼ ਸੰਤਾਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਖਤ ਦਾ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਸੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਅਕਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਲ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਛੇ ਸੰਗਤ। ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਛੇ ਸੰਗਤ, ਬੈਠੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਦਵੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਵਿਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਰਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਅਕਸਰ ਭਾਵਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਤਨੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਤਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣਿਆ। ਮਮਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਹ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੜ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ
सिर्फ प्यो नहीं करनी आंदियां, मां नहीं करनी, बच्चा तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्यो बोलता, फिर भी मां बोलता।

उतारन जो सरदा कर से विदे गुर पार उतारन। सात संग जी तक साग तीन मिनट हो गए है ते सतगुरु बख्शिश करन महापुरुष भी खेमा करन बड़िया दे सिर ते मौज हुंदी है बड़िया दा जे छोटे हिस्सा लै लैन बड़े बोल नहीं सकते इस करके ना सतगुरु महाराज कृपा करन भाई आओ महापुरुषां दे कोलों सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: और दस पातशाह का हुक्म है कि अग आवत सिंह जो पावे वाहेगुरु जी की फतेह बुलावे। फतेह बुलाउण नाल दो बार वाहेगुरु गुरमंत्र का सिमरन हुंदा है। और साध संगत जिहड़ी रसना नाल आपां वाहेगुरु कहिंदे आ, वाहेगुरु कहण नाल रसना पवित्र हुंदी है। ये बेनती मैं थोड़े दिन पहला दरबार साहब तो भी कही, पानी नाल हाथ धोवोंगे हाथ सुचे हो जाते ने, पानी नाल पैर धोवोंगे पैर सुचे हो जाते ने। किसी ने प्रशाद वरतौना होवे उन्हूं कही दे भाई हाथ धो के कोई सेवादार आओ प्रशाद वरतौना। अच्छा, वो हाथ धो के आउंदे ने, कड़ा प्रशाद वरतौण लग्या हाथ नाल प्रशाद लैके एक नूं दित्ता, दो नूं, तिन्नां नूं, चौं नूं, दसां नूं, वीहां नूं, पंजावां नूं। वार वार कड़ा प्रशाद हाथ नाल चुक के वरतौंदे ने, कदे किसी ने कहा नहीं वी तेरे हाथ झूठे हो गए, क्योंकि उन्हें हाथ धो के प्रशाद वरताया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया बहण है, कोई पैर धो के आउंदा उन्हूं महाराज जी की ताबिया बिठाई दे, भाई तू पैर धोते ने पैर सुचे हो गए। पर साध संगत का जीव जिद नाल आपां बोल रहे हैं, ये जीभा किस तरह का इंदरा है जिहड़ा किसी भी कीमत ते सुचा नहीं हुंदा। जे कोई बंदा कहे ना कि मैं तो ब्रश किया होया जी, मैं बाहरों पानी का कुरला करके आया, मेरी जीभा हुण सुची हो गई है, पर जीव जिहड़ी चीज़ नाल तुसीं लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जाता है, क्योंकि जीव सुची नहीं है। हाथ धो के किसी चीज़ नूं लाउंदे हो हाथ सुचे ने, वह वस्तु जूठी नहीं होएगी, पर जीव तुसीं बाहर पानी का कुरला करके आ जाओ ब्रश करके आओ, फिर बंदा कहे जी मेरी जीव सुची है, जिहड़ी चीज़ नूं जीव लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जाता है। इहदा मतलब जीभा जिहड़ी है वह सुची नहीं हो सकती। पर पातशाह की बाणी ने कहा भाई जीभ भी सुची हो जाती है, रसना भी सुची हो जाती है। महाराज कहदे नाल कहिंदे नाम जपत गोबिंद का सुची पई रसना। भाई ये सुची पई रसना कहदे नाल, नाम जपत गोबिंद का। जे कोई रसना नाल जपे सतनाम श्री वाहिगुरु ओदी रसना सुची हो जाती। इसलिए दो बार वाहिगुरु गुरमंत्र आउंदा है वाहिगुरु दे विच जदों आपां फतेह गजाउंदे, भाई ये रसना भी पवित्र हो जाती है। बाहरों हाथ पैर धो के अपन गुरु दरबार में आए हाँ, हुण रसना पवित्र करने लिए कहना पैंदा, एक बार फिर रसना पवित्र करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कहिंदिया मुख पवित्र हो जाए, वाहिगुरु कहिंदिया श्वासां दा भला। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जियां दा आपां पुरब मना रहे हैं शहीदी दिहाड़ा। मैं धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दा एक श्लोक लैके कथा आरंभ करनी है, ध्यान नाल सुने। दुनिया में जिन्ने भी मनुख ने हर बंदे नूं अपनी समझ उत्ते अकल उत्ते बड़ा माण है। जिन्हों मर्जी पुछ लो कहिंदा मैनूं सारा कोई पता है, मैनूं बहुत अकल है। जिहड़े बच्चियां नूं मां प्यो उंगली पकड़ के तुरना सिखाउंदे ने, मां गोदी विच बिठा के बोलना सिखाउंदी है, उही उह बच्चा जदों 15-18 साल दा हो जांदा है वह मां प्यो नूं कहण लग जांदा तुहानूं नहीं पता मैनूं पता है सब। जदों अकल दा दौर शुरू हुंदा हर बंदा कहिंदा मैनूं अकल है, हर बंदा कहिंदा मैनूं सब कुछ पता है। पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बचन कहा भाई किन्ना भी कोई बुद्धि जीव होवे, कोई ज्ञानी होवे, कोई ध्यानी होवे, कोई किन्ना पढ़िया लिखिया होवे, बंदा जो अपनी अकल नाल चाहुंदा ये याद रखियो वो कुछ हुंदा नहीं, बंदा कुछ होर सोचदा रब कुछ होर कर दिंदा। इहदा मतलब बंदे की सोच परफेक्ट नहीं है कि जो मैं सोचा उही होना, जो मैं विचारिया उही होएगा, नहीं। बंदे की मर्जी हर काम विच नहीं चलेगी, कुछ कुछ जिंदगी विच गल्लां ने जिहड़ियां पूरियां हो जाणगियां, अदरवाइज ये सच है ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਓ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਓ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਹਿ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੇ ਆਰੈ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੇ ਆਰੈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦਾ, ਚਾਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਹੋਰ, ਔਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹੋ, ਨਰ

0: to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ਪਦੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤੇ ਹਮਨ ਜੋਗ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਕਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਸ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੋਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਹੋਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਨਿਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਰ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਨੈ ਕੌਣ ਪੁਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਰ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਹੀਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਸ਼ਨੁ ਧਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਦੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह
1: ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कल सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में भेख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्र्य रूप न भेख नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू के निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विसन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन से सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नयावे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: चौवर ना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदाया देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: चौवर नाम जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सो जी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: तैसा हक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिकाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित कर रखे तैसा तन्ना
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहुब दयनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमय उदासी
1: कई कोट वीर के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नापतन नाम त्यावहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अपिक आत्म ने
1: को कई कोट पर दर्भ को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश भ्रमा है
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय
0: कई कोट पात्र बृकन बजाए
1: कई कोट पवन पानी बस संतर
0: कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट शशिय सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर शतर
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस ताम सातक
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन सुमुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृगाच
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपतरे आप प्रभुर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहु जोनी फिरे
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मा चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय वैरागी
0: राम नाम संग तन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की नो विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: सत्य होए प्रभ माहे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: हो वत्या तम प्रगास
1: कई कोट तत्व के देते
0: सदा नहारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गाव है
0: अतम रस सुख सह समाव है
1: अपने जन को साथ साथ समारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक दिस बलहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग
0: जोत सुभावे सोई होग
1: फिर मैं थाप उताप नहारा
0: अंत नहीं किस बारा वारा
1: हुक्मे धार अतार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मानो गत पावे
0: रब भावे ता पाथर त्रावे
1: रब भावे बिन सास ते रखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पत उधार है
0: आप करे अपन विचारे
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी
0: खेले अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे
0: जोत सुभावे सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले
0: जोत सुभावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह दिस धावे
0: नमक माहे चार कुंठ फिर आवे
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज
1: जां का दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दह दिस प्रगटावे
1: जां को अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न गण जग
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीव है देख बढ़ाई
1: इसका बल ना ही इस हाथ
0: कल करावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जीओ
0: जोत स्वभाव है सोई फन थी
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बस
0: है अब हूँ सोग हर करंग हस है
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार
0: अब आकाश प्याल
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: अब हूँ नृत्य करे बहु भांत
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात
1: अब हूँ महा क्रोध विकराल
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल
1: अब हूँ होए वह बड़ राजा
0: कभु भिखारी नीच का साजा
1: कभू अब कीर्त में आवे
0: कभू भला भला कहावे
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कभू होए पंडित करे बख्यान
0: कभू मोहन तारी लावे ध्यान
1: कभू तट तीर्थ स्नान
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कभू पीठ हस्त पतंग होए दिया
0: अनक जोन परमे परमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तवे न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: कभू साध संग ते पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसे पर ब्रह्म का संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जन है मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हो कर कर भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: हो जाए पसमंत
1: सेना पद आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कौ नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब ये जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहस कटे लख को उठता वे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत पतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहा विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रम सोए
1: जो किस कीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिन सह आवे न जाए
0: नानक सब ही रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किश होए
0: आंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माही
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उतर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइए
0: संत का दुखी उजड पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: आपन बीजिया पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बवार तिल खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दिक्का तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वरतै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौजा ਕਹਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਔਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨੁਕ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖਾ ਪੁਰਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਿੰਡ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਾਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ ਮਰੈ
0: ਆਪਣ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਰਗ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਮਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾਪ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਈ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ

प्रेत देवे सो धर्मे। नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवास।

डाल सकर्मा दर्शा धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ा चा चरी संत है प्रसाद गोबिंद मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग नर नामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथी स अधि स अदृ स अकृ स भगवती छंत है प्रसाद कथते क्या छिज देसै क्या भिज पेसै क्या गंज करम क्या भंज भरम क्या भिज लोक क्या दित सो क्या क्या बधूत बरन के बिभूत करन के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है क्या शोक बरन के सर्वा भरन के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है।

के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के

राजा निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, भर भूत प्रभा है, सुजूत सदा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैव काम है, दरबाद स्वरूप है, गाद है, अनूप है, ओअंग आदि रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाधे अगंज अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग है, सो सर्वानुराग्य त्रिभूत स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, कनरकं प्रणास है, पृथ्वी अल प्रवास है।

सर्वे भूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपंगी त्रिकामे।

तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चल लेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हे सार की धार पछैया तोर तदे समलेंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चाक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाच कनेक सो एक दवैया दानव देव अपने दन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जात तुन पापन कहे बहु पुंज खपेंगे साध समूह परसान फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरात अब जोन त्रिलोको राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात्र।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकाश सच्चे तेरे करने सर्वविचार सच्चा तेरा मस।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: सच्चे पातशाह नानक सच ते आए न सच जो मर्ज मैं सो कच न कच महला पहला
3: वड्डी वड्याई वड्डा नाओ वड्डी वड्याई सकने आओ वड्डी वड्याई निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझ सब पाओ वड्डी वड्याई पुछना दात वड्डी वड्याई पे

0: सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण @604581-1900।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है कि असी आम तौर ते शब्द ये भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंदा, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है, ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਕੋਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਏ। ਗਰਦਨ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ? ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਕੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਨੇਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ
सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावें शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी का सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी का ने ता अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खोन सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओ पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओ खिच पानी विचों ओनू मिल रही है। भाई साहब ने चौथा

बड़े शौक नाल सुनी है, नहीं फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहते मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं, गल खत्म। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान, इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान किया, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टूट गए ने, एदी भटकना मिट गई है। मेरा चित ना चलत, नहीं चल रहा, पता है चंचल दे अर्थ की ने, चल चल चल चल हर वक्त ही चलता है, तन बैठा है तां भी मन चलता ही रहिंदा है, चंचल है, चल चल चलदा चलदा चलदा रुकदा ही नहीं, कदे टिकदा ही नहीं। स्वामी रामानंदा बसंत राग दा शब्द कहिंदे ने मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो भंग। एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कही जांदियां ने, भई मन नु शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे, पहले कितों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे। फिर दूजी गल करदे ने मन नु एकागर करके बाणी पढ़ो, यकीन जानो इन्हां नु मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, पहले कितों एकागर हो जाएगा। ये मन नु एकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोगों नु मन दी समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, मन नु शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे, पहले किवें शुद्ध हो जाएगा। बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा। बिन भागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल भरी जे जीव, इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहिंदे ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान, ऐसा बाणी दा बाण लगे है पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो टीका ही कीता होगा, जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहिंदा जिहड़ा मेरा पैर टूट गया है ना, इस टूटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टूट गया है। हद हो गई, पैर टूट गया ते टूटे पैर दा एहसान, शुकराना पिया करदा है। अगे दसदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भइए लाल, गुलाल रंगारे कहो नानक सन तन रस आइए ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल विच रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है इनू हर साज से